0: रेडियो मिरमिरे 89.4 मेगाहर्ज।
1: होइन, के आउँछ रे? कुन रेडियोमा आउने हो?